अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

भगवान की जय। श्री आनंदगन भगवान की जय। श्री कौशल्यानंद भगवान की जय। श्री प्रसन्न भगवान की जय। श्री प्रेमानंद भगवान की जय। श्री विद्यानंद भगवान की जय। श्री कान्हा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी की जय। जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। भारत

प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सहस्त्रों यत्नशील मनुजों में कोई एक ही सिद्धि प्राप्त कर पाता है, वह उनमें से भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। श्री भगवान

समस्त जड़ एवं चेतन शक्तियों का विवेचन करते हैं, वह स्वयं को प्रकृति के गुणों से परे त्रिगुण परम कहते हैं। मधुसूदन कहते हैं,

हे भरत ऋषभ, दुष्ट नराधम मूढ़ असुर व माया के वश में अज्ञानी कभी भी मेरी शरण में नहीं आते। इसके विपरीत मुझे आर्त जिज्ञासु अर्थ अर्थी व ज्ञानी पुरुष भजते हैं। इन सब में

श्री भगवान कहते हैं कि विभिन्न देवताओं में उपासकों की श्रद्धा को मैं ही स्थिर करता हूँ। देव पूजक देवों को जाते हैं और मेरे भक्त मुझको पाते हैं। मुझ अजन्मे अविनाशी को व्यक्ति भाव में जानने वाले मूढ़ व अज्ञानी हैं। श्री गोविंद के शब्दों में

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

0: इच्छति।
1: मैं पुराण पुरुष पुण्य सलिला गोमती का अभिनंदन करता हूँ। गोमती अथवा धेनुमती नाम से ही इसकी महिमा का बखान किया जाता है। इसकी पवित्रता से प्रभावित होकर ही देश के कई जलाशयों का नाम गोमती रखा गया है। काठियावाड़ के द्वारिका धाम मंदिर के निकट की नदी भी गोमती कही जाती है। पवित्र जल वाली गोमती प्रणाम।
2: ये किसने मुझे स्मरण किया है? किसने जल तरंगों के तार झंकार दिए हैं? हाँ, मैं गोमती हूँ। मेरा जन्म हिमालय से नहीं, हिमालय की तलहटी में पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील में हुआ। मनियाकोट मेरा मायका है और माधोटांडा कस्बे की फुलहर झील मेरी माँ है।
1: इस उद्गम के लिए कहा जाता है कि एक सिद्ध संत की आस्था का वरदान है गोमती।
3: स्कंद पुराण के प्रभास खंड में एक श्लोक में जिन नदियों को पुण्य सलिला, पवित्र जलवाली और शुभ माना गया है, उनमें एक है गोमती।
4: श्री अनिल स्वरूप, निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश ने बताया।
3: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के जिला गजेटियर के अनुसार जिले की नदियां अनेक विशिष्ट प्रणालियों की हैं। जिले के उत्तर की भूमि की संकीर्ण पट्टी का जल निकास होता है शारदा नदी में। पूरनपुर परगने के मध्यवर्ती भाग से बहुत सारे सोते फूटते हैं जो मिलकर बन जाते हैं गोमती।
1: मनियाकोट के आसपास कई जल स्रोत मिलकर एक होते हैं जो वास्तव में भाबर क्षेत्र के पथरीले इलाके के नीचे नीचे से आते हैं। ये अनेक शिराएं मिलकर बनाती हैं एक जलधारा, एक जीवन धारा। हमारी संस्कृति में जल को जीवन कहा गया है।
2: जनमानस से प्रवाहित होकर जब मैं चलने लगती हूँ तो मेरे संग की सहेलियां मुझसे मिलती हैं। दूर तक मैं उत्तर से दक्षिण की ओर भागती हूँ और फिर प्रवेश करती हूँ शाहजहांपुर जनपद में।
1: इसी जनपद से गोमती का रूप निखरता है। ये सोया सोया पानी जब जागकर आगे चलता है, बढ़ता है, तो समाज के संस्कारी उपवनों को सींचता जाता है। रुहेलखंड में अपना बचपन बिताकर 67 किलोमीटर की यात्रा करके गोमती एक अल्हड़ किशोरी बनकर अवधांचल की सीमा में पांव रखती है।
2: परगना मोहम्मदी और पास गांवों के बगल से निकलते हुए मैं लखीमपुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र तक 152 किलोमीटर लंबा सफर तय करती हूँ। तराई के हरे भरे जंगलों की परछाइयां समेटते हुए, वन पक्षियों का कलरव सुनते हुए मैं बहती रहती हूँ।
1: गोमती एक नव यौवना की भांति इठलाती हुई चलती है। खीरी जिले के औरंगाबाद क्षेत्र के दक्षिण से होती हुई हरदोई जनपद में कदम रखती है। यहां से ये हरदोई सीतापुर जिलों की सीमा रेखा बनकर बहती है। यहां मिश्रित तहसील में बाईं ओर से आकर कठिना नदी इसे अपना अर्घ्य देती है। कठिना नदी शाहजहांपुर जिले की मोती झील से निकलकर आती है। अब आता है गोमती का पहला पड़ाव, नैमिषारण्य तीर्थ।
5: पृथिव्याम यानी तीर्थानी तानी तीर्थानि नैमिषे। पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वो सब नैमिषारण्य में है।
4: नैमिषारण्य के जगदाचार्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने बताया,
5: सतयुग का ये महान तीर्थ इसलिए अद्वितीय कहा गया है कि यहाँ सतयुग में 88,000 ऋषियों ने 1,000 वर्ष तक ज्ञान किया है। पांडवों ने 12 वर्ष यहाँ तपस्या की है।
2: सतयुग से ही इस साधना स्थल आध्यात्मिक पीठ से सद्ज्ञान का प्रसारण होता रहा है।

यहां सूत जी के श्रीमुख से मुनियों ने भगवत कथा का श्रवण किया था। यहीं पर वेदव्यास द्वारा वेद विभाजन किया गया और हुई 18 पुराणों की रचना।

0: इसी नैमिषारण्य में सम्राट मनु और शत्रुपा ने परमेश्वर को पुत्र रूप में पाने के लिए गोमती तट पर तपस्या की थी।
1: पहुंचे जाई धे

0: मोहना मलिहाबाद परगने के बीच से होती हुई मैं बसहरी घाट पर लासा देवी के ऊंचे मंदिर के नीचे से निकलकर बख्शी का तालाब कठवारा की चंद्रिका देवी के पांव धोती हूँ। यहाँ आसपास आमों के बाग हैं। आम्र मंजरी का मादक सौरभ बसंत ऋतु में मेरे तटों पर पसरे आंचल को सुवासित करता है। गर्मियों के मौसम में मेरे दोनों किनारों पर सुनहरे लखनऊआ खरबूजे पुखराज की तरह बिखर जाते हैं।
1: उत्तर प्रदेश आम के उत्पादन के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर कुछ खत्ते ऐसे हैं जहाँ पर कि आम की बहुत सी किस्में उगाई जाती हैं।
2: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक उद्यान मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश ने जानकारी दी।
1: लंगड़ा, दशहरी, चौसा, फजरी ये किस्में जो हैं प्रदेश की मुख्य किस्में हैं। विशेष करके दशहरी, दशहरी का जो मातृवृक्ष है वो करीब 200 साल से पुराना है, वो अब भी जीवित है दशहरी गांव में, और उसमें काफ़ी अच्छी फलत आती है। किसानों की मांग पर प्रदेश सरकार ने जो पहली फल पट्टी, आम पट्टी घोषित किया, वो काकोरी, मलिहाबाद और माल की फल पट्टी है। और गोमती नदी के आसपास जितने और शहर पड़ते हैं वहाँ पर भी आम की खेती बहुत अच्छी की जाती है।
3: अब रानी मऊरैथा के बीच होती हुई गोमती मूसा बाग और छैला गांव से होकर आती है गौ घाट पर। अब आ गया लखनऊ, कोसल जनपद का पश्चिमी दुर्ग द्वार लक्ष्मणपुर, जिसने पौराणिक काल देखे, महाजनपदीय युग देखे, फिर राजपूत साम्राज्य के बाद भरों रजवासियों की राजधानी बनी लखनावती। लखनावती को छोटी काशी और गोमती को आदिगंगा भी कहा जाता है। आज भी गोमती लखनऊ के लक्ष्मण टीले का पद प्रक्षालन कर रही है। शेखजादों का लखनऊ, नवाबों का प्यारा लखनऊ और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मैंने इसे बहुत निकट से देखा है। मुगलकालीन नवाबों के चढ़ते उतरते वैभव को और गोमती के दाएं तट पर मच्छी भवन किले को बनते देखा, फिर 1957 के स्वाधीनता संग्राम में उजड़ते भी देखा। लखनऊ के पक्के पुल से डूबते हुए सूरज को देखिए तो आपको एहसास होगा कि लखनऊ की शाम को लोग शामे अवध क्यों कहते हैं।
4: गोमती का जो महत्व है उसके बारे में ना तो इतिहासकारों ने कोई विशेष ध्यान दिया है और ना साधारण लोगों ने।
2: इतिहास वेत्ता डॉक्टर सुधींद्र नाथ कानून गो का मानना है।
4: हम लोग तो जैसे मैंने गंगा जमुना संस्कृति की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मेरे विचार में हम लोग उसको गंगा गोमती तहजीब या गंगा गोमती संस्कृति क्यों नहीं कहेंगे। इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को आकर्षित करना चाहूँगा कि अवध जर्नल में 1971 में प्रोफेसर मुनीस रजा ने एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने एक लेख लिखी, डिलिमिटिंग अवध सुबह। उस अवध सुबह में सिर्फ गंगा जमुना के महत्व के बारे में नहीं बताया उन्होंने, उन्होंने गोमती का भी अपना महत्व के बारे में उन्होंने काफ़ी प्रकाश डाला है। ये जो गंगा गोमती संस्कृति के बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ, इसको केवल एक कॉम्पोजिट कल्चर यस के दृष्टिकोण से तो आलोचना तो करना तो चाहिए, लेकिन इसका आधार केवल हिंदू और मुसलमान के बीच में जो संबंध है वो नहीं है। इस कॉम्पोजिट कल्चर यानि गंगा गोमती संस्कृति का तो आधार जो है उसका नींव प्राचीन भारत में डाली गई। इसी गोमती के किनारे कितने बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे बाग बनाए गए हैं और उस बागों के साथ हमारे इतिहास जुड़े हुए हैं, चाहे सिकंदर बाग हो चाहे दूसरी चीज़ हो। और फिर मैं फिर से यही कहूँगा, 1857

0: वन के क्रांति के पहले रसल साहब जो टाइम्स के कॉरेस्पॉन्डेंट वो आए थे लखनऊ में, तब लखनऊ के बारे में वही गोमती किनारे पे खड़े होके लखनऊ के जो इतनी सुंदर दृश्य देख के उन्होंने बताया कि इस तरह का शहर जो है ना तो इसकी तुलना ना तो रोम के साथ तुलना की जा सकती है ना कॉन्स्टेंटिनोपल के।
1: लखनऊ में मेरे घाटों पर जब तब भीड़ उमड़ कर आती है। दशहरे के दिन दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए, चेटी चंड में वरुण पूजा के लिए या शहीद स्मारक पर दीपदान के लिए। सबसे बड़ा मेला कार्तिक पूर्णिमा का मेला पूरे अघन मास चलता रहता है। लखनऊ के कुछ घाटों पर आप मंदिरों में मुझे मूर्तिमान भी देख सकते हैं। अगर आप मेरी 10वीं सदी की प्राचीन प्रतिमा देखना चाहें तो इसी जनपद के डिकोई ग्राम में देख सकते हैं। मेरे पानी में आई अपार बाढ़ ने लखनऊ नगर के कुछ हिस्सों को कई बार नहला दिया है। सन 1915 और 1923 की भीषण बाढ़ लोगों को भूली नहीं होगी, पर 1960 में तो हजरतगंज में नदी चलने लगी। कभी मेरे जल की स्वच्छता एवं पवित्रता के कारण मुझे आदि गंगा कहा जाता था। आज आबादी के दबाव, औद्योगीकरण तथा लापरवाही ने मुझे गंदे पानी का दरिया बना डाला है।
2: गोमती नदी पीलीभीत जनपद के माधो टांडा गांव से निकलकर लगभग 940 किलोमीटर की यात्रा तय करके गाजीपुर जनपद में ओडियार गांव में जाके गंगा नदी में मिलती है। इस यात्रा के दौरान प्रदेश के 8 जनपदों से होकर ये नदी गुजरती है। इस नदी में जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कई स्थानों पर किया जाता रहा है।
3: श्री प्रदीप कुमार, अध्यक्ष राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सचिव पर्यावरण उत्तर प्रदेश ने बताया,
2: इस अनुश्रवण से ये स्थिति सामने आई है कि कई स्थानों पर जो निर्धारित मानक हैं उनसे जल की गुणवत्ता काफ़ी खराब है। विशेष रूप से जहाँ तक लखनऊ का प्रश्न है, जो बैराज है उसके अपस्ट्रीम में जितना पानी में घुलनशील ऑक्सीजन होनी चाहिए उसकी अपेक्षा बहुत कम है। साथ ही जो प्रदूषण का स्तर है जिसको BOD के रूप में नापा जाता है, तो BOD का स्तर भी अपस्ट्रीम ऑफ बैराज में निर्धारित मानकों की अपेक्षा काफ़ी अधिक पाया गया है। ये जो गोमती नदी में प्रदूषण है ये मुख्य रूप से दो कारणों से है। पहला तो ये कि गोमती और इसकी सहायक नदियों के किनारे करीब 18 औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं जो अपना औद्योगिक कचरा गोमती नदी में प्रवाहित करती हैं। इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं और 18 इकाइयों में से 14 इकाइयों में तो संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। 2 इकाइयों के बंदी के आदेश जारी किए गए हैं शासन द्वारा और बाकी 2 इकाइयों में संयंत्र स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से जो प्रदूषण गोमती में आज हो रहा है उसका कारण ये है कि लखनऊ शहर और बाकी जो शहर हैं उनका सीवेज और बाकी शहर का जो कचरा होता है वो बिना शुद्धिकरण किए गोमती और सहायक नदियों में डाला जा रहा है। जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार ये स्थिति निकल के आई है कि लखनऊ में शहर का जो सीवेज है उसकी मात्रा लगभग 250 मिलियन लीटर प्रतिदिन की है और 50 टन BOD लोड प्रतिदिन नदी में सीवेज द्वारा डाला जा रहा है। इसके विपरीत जितनी औद्योगिक इकाइयां हैं उनके द्वारा लगभग 2.5 टन प्रतिदिन BOD लोड नदी में डाला जाता है। तो इससे ये अंदाज लगाया जा सकता है कि औद्योगिक इकाइयों की अपेक्षा शहर का सीवेज शुद्धिकरण ना हो पाने के कारण 25 गुना BOD लोड नदी में प्रवाहित हो रहा है। अब प्रश्न ये है कि इसके बारे में शासन क्या कर रहा है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि गंगा एक्शन प्लान का द्वितीय चरण क्रियान्वित होने वाला है जिसके लिए भारत सरकार ने मंजूरी दी है और इसके अंतर्गत जो गोमती नदी है उसके किनारे स्थित 3 शहर जिनमें लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर हैं, उनमें शुद्धिकरण का काम किया जाएगा। नालों में जो पानी जाता है, जो बाद में नदी में जाके मिलते हैं, उनमें पानी डाइवर्ट करके सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाएगी।
1: लखनऊ जनपद में अखंडी मंझावा गांव में, झिलंगी गोपरा मऊ में और बेता कांकराबाद में मेरे दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। कुकरैल ही यहाँ बाएं तट पर मुझसे संगम करती है। लखनऊ के पिपरिया घाट के बाद से शहर मुझसे दूर हो जाता है और मोहनलालगंज के सिकंदरपुर खुर्द के आगे लखनऊ जनपद भी मुझसे छूट जाता है। यही गस्कर में रेठ और सलेमपुर में लोनी नदी मुझ में मिल जाती हैं। अब आता है बाराबंकी जिले का दक्षिण भूभाग। यहाँ हैदरगढ़ के निकट से मैं गुजरती हूँ और इसी जिले में आकर मुझसे गले मिलती है कल्याणी नदी। उत्तर पश्चिम दिशा से मेरा प्रवेश सुल्तानपुर जिले में होता है। यहाँ उत्तर में मीरनपुर और दक्षिण में बरौंसा है। पासी है जगदीशपुर की नए औद्योगिक विकास से जगमगाती धरती। इसी सुल्तानपुर शहर के बीच मैं चुपचाप निकल जाती हूँ सीता कुंड तीर्थ से। त्रेता युग में भरत जी चरण पादुका लेकर इसी मार्ग से अयोध्या लौटे थे।

0: इसके बाद मिलता है पांचों मीरन का गांव और उनके मजार। अब अल्देबहू और चांदा के बीच होकर पपड़िया घाट के बाद आता है धौत पाप तीर्थ। इस स्थान पर अल्देबहू नूरपुर परगने में मेरे तट पर सतई बाबा का प्रसिद्ध मठ है, जहां मेला लगता है। खुदाई में बहुत से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। भरों का राज सदियों से रहा है। शेरशाह के दो किले भी हैं। यही चांदीपुर में कंदूनाला आकर मिलता है। इसके बाद दक्षिण पूर्व की तरफ चलकर सिगरामऊ से जिला प्रतापगढ़ को छूकर मैं जौनपुर की मेहमान बनती हूँ।
1: मेरे जहन में इस वक्त एक अवनींद्रनाथ ठाकुर की बात याद आ रही है। एक बार उन्होंने कहा था कि गोमती एक अत्यंत सुंदर नदी है, और उन्होंने गोमती को गोमती ना कहकर गोमती नदी कहा था। और उसी मनमोहनी गोमती नदी के किनारे ये जौनपुर का शहर बसाया गया था।
2: इतिहासविद डॉक्टर प्रदीप कुमार घोष ने कहा,
1: इस जौनपुर शहर में मध्यकालीन भारत का अतीत सोया पड़ा हुआ है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार जौनपुर का प्राचीन नाम जमदग्निपुर था, जो कि ऋषि जमदग्नि के नाम से रखा गया था। किंवदंतियों के अनुसार एक कथा और प्रचलित है कि रामचंद्र जी ने किरारावीर नाम के एक दैत्य को उसके अत्याचारों के कारण उसका दमन करने आए थे, और उसको दमन करके उसके धड़ को वहीं छोड़ दिया था। और उसी स्थान पर उन किरारावीर के अनुयायियों ने एक मंदिर बनाया उसके नाम को अमर करने के लिए, और इसीलिए कहा जाता है कि उस स्थान का नाम बाद में जौनपुर पड़ा। लेकिन अय्या बिन अहमद ने अपने तारीख़ मुबारक शाही में लिखा है कि फिरोज़ तुगलक जब अपने बंगाल अभियान के लिए जा रहे थे
2: जी।
1: तो रास्ते में अत्यधिक वर्षा के कारण उन्हें एक जफराबाद नामक स्थान पर रुकना पड़ा, और वहीं से उन्होंने दूर गोमती को बहते हुए देखा। उस लुहावनी मनमोहनी दृश्य को देखकर उनके मन में आया कि यहाँ पे एक शहर बसाया जाए। और साथ में तक सब एक उनका स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी शायद उनके दिमाग में था कि उन्होंने सोचा कि उस जगह को, उस नए शहर को उनके बंगाल अभियान के लिए एक फोकल पॉइंट बनाया जाए।
0: सन 1567 में मुगल सम्राट अकबर जौनपुर पधारे तो उन्होंने देखा मेरे किनारे एक औरत खड़ी रो रही है।
3: अरे नदी के सुनसान किनारे पर खड़ी तुम किस लिए रो रही हो?
4: जहां पना, मैं एक गरीब विधवा औरत हूं। मैं चरखे पर सूत काट कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मैं सूत बेचने दरिया पार आई थी, लेकिन अब लौटते वक्त यहाँ कोई नाव नहीं है। अंधेरा होने को है, उधर मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते करते थक जाएंगे और भूखे ही सो जाएंगे।
3: आए नेक खातून, मुझे तुम्हारे दुख की दास्तान सुनकर बेहद रंज हुआ है। मुनीम खान खाना
5: जी, बंदा परवर,
3: यहाँ पर एक पुल तामीर होना चाहिए।
5: महाबली, आपका हुक्म सर आंखों पर।
6: ₹30 लाख की लागत से तैयार हुआ जौनपुर का शाही पुल। खूबसूरत छतरियों वाला ये गोमती का पुल विश्व का पहला लेवल ब्रिज है। इसी की नकल पर सन 1810 में लंदन शहर का वाटरलू लेवल ब्रिज बनाया गया।
2: जौनपुर में जो एक कॉम्पोजिट कल्चर के जो उद्भव है उसके पीछे कोई कम्युनल टेंशन इस तरह के कोई बात नहीं थी। वो तो लोदी सुल्तान और जौनपुर सुल्तानों के बीच में आपस में जो झगड़ा था माने उसी का एक नमूना है।
7: डॉक्टर सुधींद्रनाथ कानूनगो के अनुसार
2: जौनपुर स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो गंगा गोमती संस्कृति के एक अपूर्व झलक आपको मिलेगी। शारकी सुल्तान नगरा तो मुसलमान ज़रूर थे वहाँ पर, चाहे इब्राहिम शर्की हो चाहे हुसैन शाह शर्की हो। मैं शायद आपने गौर किया, जो सबसे प्रमुख मस्जिद है जौनपुर में उसका नाम है अटल्ला देवी मस्जिद। अब ये अटल्ला देवी मस्जिद अभी भी मुसलमान लोग भी कहते हैं। अच्छा, उसके जो मेन आर्किटेक्ट है वो एक हिंदू था। एक दूसरे मस्जिद जामी मस्जिद, उसका भी महत्व कम नहीं है, उसका भी जो आर्किटेक्ट है वो भी एक हिंदू, उसका नाम दिया हुआ है कमो विषाद्रु। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मध्यकालीन भारत में जौनपुर को शिराज ऑफ इंडिया कहा जाता था। कहने का मतलब यही है कि जौनपुर और लखनऊ ये जो दो प्रमुख शहर गोमती के किनारे बसे हुए हैं, ये केवल एक शहर नहीं एक संस्कृति के भी प्रतीक है।
6: गोमती जौनपुर की झंझरी मस्जिद को अपने दाएं तट पर छोड़कर आती है कागज के इस छोटे शहर में जिसका नाम था जमैथा। यहां महर्षि जमदग्नि रेणुका और परशुराम जी का आश्रम रहा है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे शहर अनवार का नाम दिया था। यहां फकीरों के कई मजार होने के कारण इसको जनता पीरन शहर भी कहती रही। बाद में गयासुद्दीन तुगलक के बेटे जफर के नाम से इसे नाम मिला जफराबाद।
0: जौनपुर के आगे लगभग 29 किलोमीटर पूर्व तिरमुहानी पर सई नदी मेरे दाएं तट पर आकर मिलती है। इस संगम पर हर साल मेला लगता है।
6: गोमती आगे बढ़कर दक्षिण पूर्व की ओर वाराणसी और गाजीपुर जिले की विभाजक रेखा बनती है। यहीं बाएं किनारे पर इसका संगम होता है नंद नदी से। संगम से 8 किलोमीटर दूर गोमती अपनी पचरंगी चूनर लहराती हुई गंगा में मिलकर गंगा हो जाती है। यहां मार्कंडेय महादेव का सुविख्यात मंदिर है। यह वही स्थल है जहां राजा देवास ने दूसरी काशी बनानी चाहिए थी।

0: मैं ना पर्वतों से उतरी हूँ ना समुद्र में गिरी हूँ। उत्तर प्रदेश में ही मेरा लय होता है और उत्तर प्रदेश में ही विलय हो जाती हूँ।
1: खीरी जिला गजेटियर के अनुसार नदी के रेतीली मिट्टी के निचले तटों के अलावा कहीं भी गोमती सिंचाई के लिए उपयोगी नहीं है।
2: श्री अनिल स्वरूप ने कहा,
1: अपने पूरे बहाव में गोमती कहीं भी सिंचाई के काम नहीं आती। रेतीली मिट्टी

0: के निचले किनारों पर ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज तथा मौसमी साग सब्जियों की खेती परंपरागत ढंग से की जाती है। सीतापुर पहुंचकर गोमती नदी नावों के उपयोग का अवसर देती है। इसके बाद सीमित रूप से जलमार्ग का काम देती है। जौनपुर के जिला गजेटियर के अनुसार गोमती अपने आकार के बजाय अपने बहाव की लंबाई के लिए उल्लेखनीय है।
1: मैंने प्रगति के पौधों को पानी दिया है और दिया है सारे संसार को प्यार भरा संदेश।
2: गोमती ने जिस पथ को अपना जीवन मार्ग बनाया है, वही पथ इसके गंगा जमुनी चरित्र की पहचान है। गोमती की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है सर्वधर्म समन्वय की। इस नदी ने इस महान राष्ट्र के सीने पर चंदन पानी की एक ऐसी लकीर खींची है जिसकी सुगंध ने न केवल देश को वरन सारे संसार को आकर्षित किया है, प्रभावित किया है।

0: शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि तारकासुर वध के पश्चात भगवान शिव शंकर तथा देवी पार्वती गृहस्थ आश्रम का सुख भोगने लगे थे। दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय बड़े हो चुके थे। महादेव और महादेवी ने उनके विवाह का निर्णय लिया। शर्त रखी गई कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। गणेश जी ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए माता पिता की ही 7 परिक्रमाएं कर डाली। पूछने पर कहा कि वेद शास्त्रों के अनुसार माता पिता ही संतान का संपूर्ण संसार होते हैं, अतः उन्होंने संसार की एक नहीं बल्कि 7 परिक्रमाएं पूर्ण की हैं। गणेश जी का शुभ विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ संपन्न हुआ। उधर दैत्य माता दिति ने पुनः दैत्य साम्राज्य के विस्तार की योजना बनानी आरंभ कर दी। प्रस्तुत है इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूद जी, सहस्रों वर्षों से अजेय तारकासुर की मृत्यु के पश्चात भी दिति को बुद्धि नहीं आई, वो फिर दैत्यों के नाश का सोचने लगी।
2: शौनक जी, यही प्रश्न उठता है गुरु की महत्ता का। देवता भी विपत्ति आने पर सदैव त्रिदेव की ही शरण में जाते थे और वे गुरु का धर्म निभाते हुए उनका कल्याण भी करते थे, परंतु दिति ने तो दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य तक को अपदस्थ कर दिया था। तारकासुर पुत्रों को मार्गदर्शन मिलता तो कहां से।
1: महाभाग सूत जी, तो फिर दिति ने क्या किया।
2: उसने स्त्री सुलभ चाल चली, रोती बिलखती वो दैत्य सेनापति के साथ तारक पुत्रों के पास गई।

0: हाँ प्रपौत्र, तुम्हारी इस दुखदायी स्थिति के कारण हम ही हैं। हम ही ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का प्रस्ताव न मानकर तुम्हारे पिता को मृत्यु का आलिंगन करवा दिया, असुर साम्राज्य का नाश कर डाला।
1: हमारे पिता की मृत्यु के पश्चात आपके इस विलाप का कोई अर्थ नहीं रह जाता दैत्य माता दिति।
0: प्रपौत्र तारकाक्ष, एक ओर हमें दैत्य माता भी कहते हो, दूसरी ओर हम पर यूं कटाक्ष भी करते हो।
1: सत्य को कटाक्ष समझना आपकी भूल है दैत्य माता।
0: हम जानते हैं तारकाक्ष, दैत्य कुल में उत्पन्न होने के उपरांत भी तुम तीनों भ्राता अपनी सत्यवादिता और धर्म परायणता के लिए जग प्रसिद्ध हो। असुर कुल में उत्पन्न होने के पश्चात भी तुम सतोगुण से परिपूर्ण हो, इसीलिए हमारी इच्छा है कि एक नवीन असुर परंपरा की नींव रखी जाए, जिसमें ब्रह्मा द्वारा प्रतिपादित तीनों गुणों का सम्मिश्रण हो।
2: ये आप कह रही हैं दैत्य माता दीति? आप जिन्होंने तमोगुण की सभी सीमाएं लांघकर दैत्यों का आतंक बढ़ाया, इस सीमा तक कि हमारे पिता को असमय मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा।
0: प्रपौत्र विद्युन्माली, काल कभी असमय नहीं आता, और समय न किसी के लिए ठहरता है न किसी के लिए एक समान रहता है।
1: आप कहना क्या चाहती हैं दैत्य माता दीति, साफ साफ कहिए।
0: तारकाक्ष, एक माता की क्या अभिलाषा हो सकती है? यही ना कि वो अपने वंश को फलता फूलता देखे, उसकी जय जयकार सुनकर गौरवान्वित हो। परंतु दैत्यों की जय जयकार देवताओं की हार पर निर्भर है।

0: देवताओं ने छल से हमारा अमरत्व का अधिकार तो छीन लिया है, परंतु शासन का अधिकार हमसे नहीं छीन सकते।
1: हम कितना भी प्रयत्न कर लें दैत्य माता, ब्रह्मा विष्णु और महेश को उनके स्थान से नहीं हटा सकते।
2: युवराज तारकाक्ष, आपका कथन सत्य है, परंतु हम इन्हीं तीन देवताओं के आशीर्वाद से इंद्रादि सभी देवताओं को उनके लोकों से हटा सकते हैं, त्रिलोकी पर पुनः अधिकार कर सकते हैं। यदि हम अस्त्र त्याग कर मात्र शोक मनाते रहे तो देवता सदा के लिए हम पर हावी हो जाएंगे।
0: सेनापति ठीक कह रहे हैं तारकाक्ष, हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा।
3: तो हमें क्या करना चाहिए दैत्य माता?
0: विद्युन्माली, तुम्हें अपने महान पिता तारक की परंपरा को पुनः स्थापित करना होगा।
3: परंतु पिता श्री की मृत्यु के पश्चात समस्त दैत्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया है।
2: हमें इन पर पुनः विजय प्राप्त करनी होगी। हमारी सेना अन्य दैत्य सेनाओं से अधिक बलशाली है।
0: और प्रपौत्रों, छल बल में तुम तीनों एक समान हो, अपने पिता से किसी तरह कम नहीं हो।
1: परंतु क्या देवता हमें पुनः पनपने देंगे?
0: इसका उपाय शुक्राचार्य तुम्हें बताएंगे।
1: परंतु वे तो हमसे रुष्ट हैं।
0: तुमसे नहीं तारकाक्ष, वे हमसे रुष्ट हैं। और हम स्वयं जाकर उनसे क्षमा मांगेंगे।
3: यदि दैत्य गुरु का मार्गदर्शन हमें मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
0: आओ प्रपौत्रों, आइए सेनापति, सब मिलकर शुक्राचार्य के पास चलते हैं।
4: प्रणाम गुरु शुक्राचार्य।
5: तारक पुत्रों, तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष, आयुष्मान भव।
0: दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इस अकिंचन का प्रणाम भी स्वीकार करें।
5: दैत्य गुरु, हम कब से दैत्य गुरु हो गए? दैत्य माता दीदी, आपने तो हमें इस पद से हटा दिया है।
0: अपने इस कुकृत्य का फल हम ही नहीं पूरा दैत्य साम्राज्य भोग रहा है। हम दैत्यों के ही नहीं आपके भी अपराधी हैं। अहंकार में गुरु का ही अपमान कर बैठे।
5: बाण कमान से छूटने के पश्चात पुनः तुणीर में नहीं आता है दैत्य माता, आहत तो हम हो चुके हैं।
0: हम जानते हैं दैत्य गुरु, हमने अक्षम्य अपराध किया है, परंतु हमारे अपराध का दंड हमारे इन प्रपौत्रों को न दीजिए।
1: दैत्य गुरु, आप ही इस असुर वंश को लुप्त होने से बचा सकते हैं। बालपन से हम तीनों भ्राता आप ही से शिक्षा दीक्षा पाकर बड़े हुए हैं। असुर न होकर भी आप सदैव हमारे हितैषी रहे हैं।
5: हितैषी तो हम अब भी हैं पुत्र तारकाक्ष। गुरु कभी अपने शिष्य के अहित की कल्पना भी नहीं कर सकता, परंतु गुरु और शिष्य के मध्य अगर किसी का अहंकार और दंभ आ जाए तो गुरु को अपने सम्मान की रक्षा स्वयं करनी होती है।
0: हम जानते हैं दैत्य गुरु, आप हमारी ओर इंगित कर रहे हैं, परंतु अब हम प्रण लेते हैं कि आपके मध्य कभी न आएंगे। हमें दैत्य कुल का यश पुनः चाहिए, इसके लिए हम कुछ भी करने को तत्पर हैं।
5: ठीक है दैत्य माता दीदी, हम एक बार और आपका विश्वास किए लेते हैं।
0: दैत्य गुरु, आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा।
5: हम आश्वस्त हुए। तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष।
6: जी दैत्य गुरु।
5: दैत्य साम्राज्य की पुनः नींव डालना आवश्यक है। जाओ, मेरु पर्वत पर सुर और असुरों के महायशस्वी गुरु ब्रह्मा जी की आराधना करो। वे अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे।
6: जो आज्ञा गुरु शुक्राचार्य।
5: परंतु पुत्रों, इस बार वरदान सोच समझ कर मांगना।
6: ऐसा ही होगा दैत्य गुरु।

0: परमपिता ब्रह्मा को हम तीनों भ्राताओं का प्रणाम।
1: हे तारक पुत्रों, तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। अपने इस घोर तप का उद्देश्य बताओ।
2: हे विधात, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें वरदान दें कि हमारा वध कोई न कर पाए।
3: हम देवताओं की भांति स्थिर हो जाएं, जरा रोग हमें छू भी न पाए।
4: मृत्यु हमारे समीप से नेत्र मूंद कर निकल जाए, हम अजर अमर हो जाएं।
1: महादैत्यो, अमरत्व प्राप्त करने का लोभ हर प्राणी को होता है। वो सर्वप्रथम हमसे यही मांगता है, परंतु ये वरदान हम दे नहीं सकते। यदि सभी अजर अमर हो गए तो हमारी ही बनाई सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए सृष्टि का नियम है, जन्म हुआ है तो मृत्यु भी अवश्य होगी। अतः तारक पुत्रों, कुछ और मांगो।
2: जब मृत्यु अवश्यम भावी है ब्रह्मदेव, तो कोई भी अन्य वर मांगने का क्या उपयोग?
1: तारकाक्ष, बुद्धि के उपयोग से मृत्यु को सहस्रों वर्षों के लिए टाला अवश्य जा सकता है। तुम्हारे पिता का उदाहरण तुम्हारे समक्ष है। उसने ऐसी मृत्यु मांगी जिसे देने में यमराज को भी सहस्रों वर्ष लग गए। देवता हतोत्साहित हो उठे।
3: तो फिर हम कैसी मृत्यु मांगे?
1: विद्युन्माली, तुम तीनों अति बुद्धिमान हो। कुछ ऐसा उपाय सोचो जिससे तुम्हारी रक्षा हो सके और मृत्यु भी तुम्हारा वरण ना कर सके।
2: हे ब्रह्मदेव, हम तीनों ही अति बलशाली हैं, परंतु हमारे पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रह सकें। सर्वप्रथम आप हमारे लिए तीन ऐसे नगरों का निर्माण करवाएं जिन्हें देवता भी न भेद पाए।
1: तथास्तु तारकाक्ष।
3: मेरा नगर वज्र समान कठोर लोहे का बना हो।
1: तथास्तु विद्युन्माली।
4: और मेरा नगर रजत का बना हो।
1: ऐसा ही होगा कमलाक्ष।
2: और ब्रह्मदेव, मैं स्वर्ण नगर का स्वामी बनूं।
1: तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण होगी तारकाक्ष। कुछ और भी इच्छा है?
2: हाँ हाँ सृष्टिकर्ता, ये तीनों नगर एक के ऊपर एक सीध में बने हों और सबकी दृष्टि से ओझल रहे, ताकि कोई हमारे निवास को ढूंढ ही ना पाए।
1: हे बलशाली असुरों, जाओ, तुम्हारे ये नगर त्रिपुर नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा तुम तीनों त्रिपुरासुर कहलाओगे। अब अपनी मृत्यु का उपाय भी मांग लो।
2: एक सहस्र वर्ष पश्चात भगवान शंकर एक अद्भुत सर्वदेवमय रथ पर बैठकर आए, तभी हमारा नगर उन्हें श्री विष्णु को और आपको दिखाई दे पाएगा। फिर वे एक ही अनोखे बाण से हमारे तीनों नगरों का एक साथ भेदन करें, तभी हमारी मृत्यु संभव हो पाएगी।
1: तथा समय आने पर स्वयं विश्वकर्मा इस रथ का निर्माण करेंगे। मैं दानव,
5: आज्ञा परम पिता।
1: इन तीनों दैत्य भ्राताओं की इच्छाओं के अनुरूप त्रिपुर की रचना करो।
5: आदेश का पालन होगा विश्व निर्माता।
2: एक बार फिर ब्रह्मा हम दैत्यों को मनोवांछित

0: वरदान दे ही गए।
1: परंतु भ्राता श्रेष्ठ, अमृत तो हमें अब भी प्राप्त नहीं हुआ।
0: हुआ कैसे नहीं है? जब हमारे नगर सबकी दृष्टि से ओझल रहेंगे तो कोई उन्हें भेद कैसे पाएगा?
2: इतने प्रसन्न मत हो तारक पुत्रों, तुम शिव की महिमा से अनभिज्ञ हो पुत्र तारकाक्ष, उनके लिए क्या संभव है?
3: परंतु दैत्य गुरु, तारकाक्ष ने 1000 वर्ष की अवधि भी तो मांगी है अपने को पुनः शक्तिशाली बनाने के लिए। ये समय पर्याप्त है।
2: आप फिर कूटनीति से भरी बात कर रही हैं दैत्य माता। पूर्व में यही दैत्यों के पतन का कारण बनी थी।
3: क्षमा करें दैत्य गुरु, तो अभी से कोई उपाय कीजिए।
2: है एक उपाय। शिव अति भक्त वत्सल हैं, कभी अपने भक्त का अहित नहीं करते। तारक पुत्रों,
4: आदेश दैत्य गुरु।
2: तुम कुछ भी करो, अत्याचार पाप, परंतु सदा अपने हृदय को शिव भक्ति में लीन रखो। उन्हें सदा पूज्य वंदनीय मानो। वे कभी अपने भक्त का अंत नहीं करेंगे।
0: दैत्य गुरु, परंतु कामदेव को
2: तो... इसीलिए कहता हूँ, किसी के विरुद्ध कुछ भी करो, शिव के विरुद्ध कभी कुछ मत करना। शिव आराधना अपना धर्म बना लो, तुम अमर हो जाओगे।
4: जैसी आपकी आज्ञा दैत्य गुरु।
3: शिव आराधना, जिस शिव का मैं नाश चाहती हूँ उसी की आराधना। शुक्राचार्य, समय एक बार फिर आपके साथ है, परंतु देखती हूँ कब तक। मैं भी देवताओं का अस्तित्व मिटाए बिना चैन से नहीं बैठूंगी, कभी नहीं। भले ही मुझे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का बलिदान ही क्यों ना करना पड़े।
5: तो महाभाग सूत जी, कुछ वर्षों की शांति के पश्चात दैत्य साम्राज्य का फिर से विस्तार आरंभ हो ही गया।
6: हाँ शौनक जी, परंतु इस बार एक विशाल परिवर्तन आ गया था। तारक के तीनों पुत्रों ने शुक्राचार्य के आदेश से बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति अपना ली थी। पापी पुरुष उनके दर्शन तक न कर सकते थे।
5: दैत्य प्रकृति में ऐसा परिवर्तन सूझ जी?
6: समय की यही मांग थी और यही था अमरत्व प्राप्त करने का एकमात्र उपाय। धीरे धीरे तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष ने पुनः त्रिलोकी पर आधिपत्य कर लिया, परंतु बिना किसी को सताए। इस बार उनका बल धर्म था।
5: तो क्या देवताओं ने अपना राज्य पुनः स्थापित करने का प्रयास नहीं किया सूत जी?
6: किया क्यों नहीं शौनक जी, निराश देवता सदा मार्गदर्शन के लिए सृष्टिकर्ता की ही शरण में जाते थे। इस बार भी वे करबद्ध हो परम पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे।
7: देवगणों, हम जानते हैं इन तीनों महादैत्यों को हम ही ने बढ़ाया, प्रोत्साहित किया है। अतः इनका गुरु होने के कारण हम इनका वध नहीं कर सकते। इनकी मृत्यु मात्र देवाधिदेव के हाथों निश्चित है। यदि वे सर्वाधीश प्रसन्न हो जाएं, तो आपके कष्टों का निवारण संभव है। देवराज इंद्र।
8: आज्ञा ब्रह्मदेव।
7: आप सभी देवताओं के सहित उन कृपा सिंधु की सेवा में जाएं। अपने दुखों का विवरण देते हुए उन्हीं से तारक पुत्रों के नाश का आग्रह करें।
8: परमपिता,

0: आप भी हमारे साथ चलिए ना। महाप्रभो आपका निवेदन कभी नहीं टालते।
1: नहीं इंद्रदेव, इस समय हमारा आपके साथ चलना उपयुक्त न होगा। महादेव का प्रथम प्रश्न हमसे ही होगा कि दैत्यों की प्रकृति जानते हुए भी हमने उन्हें वरदान क्यों दे दिया।
0: क्षमा करें विधात, ना चाहते हुए भी देवता भी आपसे ये प्रश्न कर सकते हैं।
1: हाँ, आपका प्रश्न करना उचित ही होगा देवराज, परंतु हम अपने ही बनाए नियमों से बाध्य हैं। भक्त से प्रसन्न हो उसे मनवांछित वरदान देना हमारा धर्म है, परंतु ये भी स्मरण रहे देवराज कि वरदान का दुरुपयोग भी हमें सह्य नहीं है। भक्त को दंडित करने के उपाय भी हैं हमारे पास।
0: तो विधात, आप तारकाक्ष, विद्युन्माली तथा कमलाक्ष को दंडित क्यों नहीं करते?
1: इंद्रदेव, वे धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, वे समरों में विजय प्राप्त कर रहे हैं अपने बल से, ना कि अपने अत्याचारों से। उनकी बंधित प्रजा उनके राज में सुखी है। हम उन्हें दंडित करें तो किस आधार पर? महाप्रभु, आपके इस अकस्मात दर्शन से मैं धन्य हुआ।
2: प्रिय ब्रह्मदेव, हम आपके मन की ये दुविधा ही दूर करने आए हैं। हम आपकी स्थिति अच्छी तरह समझ रहे हैं तथा इन देवताओं को भी यही समझाने आए हैं कि आपके कथन अक्षरतः सत्य हैं।
0: परंतु देवाधिदेव, हमारे कष्टों का निवारण कैसे संभव होगा? हम पुनः राज्य विहीन हो भटक रहे हैं, जबकि पापी दैत्य।
2: इंद्र, पाप और पुण्य की परिभाषा सुरों, असुरों तथा मानवों के लिए भिन्न नहीं है। सभी पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं, सभी के हाथों पुण्य होता है।
0: महाप्रभु, हम देवता हैं, सदा पाप कर्म से दूर रहते हैं।
2: इंद्र, अपने पाप कर्मों का स्मरण करो।
0: अपने पाप कर्म? महाप्रभु,
2: स्मरण करो अपनी काम वासना, ऋषि गौतम की पत्नी पर आसक्त होकर तुमने छल किया, गौतम का रूप धारण कर उसके साथ शयन किया। इंद्र, हम शिव हैं, हम किसी में भेद नहीं रखते। जब हम स्वयं अपनी पत्नी सती के अविश्वास के कारण उसका मानसिक त्याग कर सकते हैं, कामदेव को अपनी तपस्या में बाधा डालने के लिए भस्म कर सकते हैं, तो इंद्रदेव, हम आपके इस कुकर्म के लिए आपको दंडित क्यों नहीं कर सकते?
1: पुत्र इंद्र, यही देवाधिदेव का न्याय है। सतो गुण के स्वामी होकर भी जो मार्ग से विचलित होता है वो महाप्रभु के दंड का भागी होता है।
2: और पुत्र इंद्र, तारक पुत्र इस समय महान पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं। नियम यही कहता है कि पुण्य आत्माओं पर विद्वानों को प्रहार नहीं करना चाहिए। देवताओं के समस्त कष्ट हमें ज्ञात हैं, फिर भी धर्माचरण के कारण वे दैत्य अवध्य हैं।
0: महादेव, अर्थात दैत्यों का विनाश संभव नहीं?
2: मैं संघारक हूं, फिर भी मैं मित्र द्रोह नहीं कर सकता। दैत्य मेरी भक्ति कर मेरे मित्र बने हुए हैं। स्वयं ब्रह्मा जी के शब्दों में, तुम सब कर्म के मर्मज्ञ हो, अतः तुम ही बताओ, जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं तो मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं?
0: अर्थात देवाधिदेव, आप भी हमारी समस्या का निवारण करने में असमर्थ हैं?
2: इंद्र, ब्रह्मा जी विष्णु हरे और हम महेश, असमर्थ तो हो ही नहीं सकते। हम आपको उपाय बताते हैं। आप क्षीर सागर वासी विष्णु के पास जाएं, वे और नारद मुनि अवश्य ही आपके कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताएंगे। जाओ, उन्हीं के पास जाकर निवेदन करो।
0: जो आज्ञा देवाधिदेव। और महाज्ञानी शौनक जी, देवाधिदेव ने देवताओं को कष्ट निवारण का उपाय बता ही दिया।
3: आश्चर्य की बात है महाभाग, पहली बार ऐसा हुआ जब प्रभु शिव शंकर ने स्वयं कुछ उपाय न कर देवताओं को विष्णु जी के पास भेज दिया।
0: विप्रवर शौनक जी, कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी व्यक्ति के पास समस्या निवारण का उपाय ही ना हो। ऐसे में बुद्धिमान व्यक्ति दुखी व्यक्ति को उलझाए बिना निवारणकर्ता के पास भेज देता है।
3: महाभाग सूत जी, इसका मतलब ये हुआ कि देवाधिदेव जानते थे कि देवताओं की समस्या का हल विष्णु हरे के पास है। सूत जी, श्री विष्णु ने देवताओं को क्या उपाय सुझाया?
0: श्री विष्णु हरे ने जो उपाय समझाया उसकी चर्चा हम अगली भेंट में करेंगे।
4: श्रोताओ, शिव महिमा का ये प्रकरण शिव पुराण के रुद्र संहिता पंचम खंड के पहले अध्याय से लेकर पांचवें अध्याय तक से लिया गया था।

हुण तुसी सुन रहे सी पंजाबी फिल्म संगीत। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। इस वेले शाम दे 4:30 बज रहे ने। हुण असी तुहानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलदे हां, जित्थों तुसी शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे।

भले घर के तू बेटे, मैं तो करता हूँ अरदास यही दाग लगा के बेटी मन।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसा कर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

0: जनसमूह को साथ ले अपने भाई शत्रुघ्न के साथ भरत जी तीसरे दिन श्रृंगवेरपुर के पास जा पहुंचे।
1: भरत आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कहीं उनके मन में कुछ कपट तो नहीं है? अवश्य है, न होता तो सेना क्यों लाते? शायद वे समझते हैं कि राम वन में अकेले हैं, उनको मारकर निष्कंटक राज्य क्यों ना भोगा जाए। आखिर कैकेयी के बेटे हैं ना, लेकिन वे ये नहीं जानते कि सारे देवता और दानव मिलकर भी यदि आए तो राम को नहीं जीत सकते। सैनिकों सावधान हो जाओ, हत बांसव बोरहु तरन, कीजिए घाटारो। देखता हूं मेरे रहते गंगा कैसे पार करती हैं। ऐसी मृत्यु कब कब मिलती है, और राम के लिए मरने में तो दोनों हाथ लड्डू हैं, यश भी और मुक्ति भी। लाओ मेरा तूड़ी धनुष और कवच उठा लाओ, देर मत करो।
2: जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। राम के प्रताप और आपके बल से हम भरत की सेना के एक एक योद्धा को चुन चुन कर मार डालेंगे। जीते जी पीछे हटने वाले नहीं, सारी धरती को रुंड मुंड से पाट देंगे।
1: युद्ध के बाजे बजने दो।
2: बहुत ही अच्छा शगुन है, रण में अवश्य सफलता मिलेगी।
3: खहरो राम ही भरत मनावन जाहीं, सगुन कहीं अस विक्रहु नाहीं। सगुन कहता है कि भरत राम को मनाकर लौटा लाने के लिए बन जा रहे हैं, तुम उनसे जाकर मिलो, युद्ध का अवसर नहीं आएगा।
1: शायद आप ठीक कहते हैं, नीति कहती है सहसा करे पछताहे बिमूढ़ा। भरत का शील स्वभाव जाने बिना लड़ाई की घोषणा करना अपनी ही हानि करना है, इसलिए तुम सब लोग घाट पर डटे रहो, मैं अकेला जाकर सब भेद ले आता हूं।
0: उन्हें इस प्रकार समझा बुझाकर और भेंट के लिए नाना प्रकार की सामग्री लेकर वे भरत से मिलने के लिए चले। दूर से ही अपना नाम बताकर दंडवत प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ के मुख से ये सुनकर कि राम के सखा निषाद राज उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, भरत झट रथ से कूद पड़े और उन्हें उठाकर छाती में भर लिया। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई, मनहु लखन सन भेट भई, प्रेमुन हृदय समाय।
4: धन्य धन्य धन्य।
1: श्रृंगवेरपुर का निवासी निषाद आपके चरणों में प्रणाम करता है।
5: कहिए निषाद राज, सब प्रकार से मंगल तो है?
1: प्रभो आपकी कृपा से मेरे और मेरे करोड़ों कुलों का मंगल ही मंगल है। मेरे जैसे कपटी कायर मूर्ख और सब प्रकार से गए बीते को जब से राम ने अपना लिया तभी से मैं संसार का भूषण बन बैठा हूँ।
0: निषाद की ऐसी प्रीत देखकर और सब लोगों ने भी उन्हें गले से लगा लिया। सब को लेकर वे श्रृंगवेरपुर आए और गंगा के दर्शन कर गदगद हो उठे। करहीं प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी, करी मज्जनु मांगहीं कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। भरत बोल उठे,
5: माँ गंगे आपका रेणु सब सुख देने वाला है, काम धेनु के समान है। मैं आपसे यही वर मांगता हूँ कि राम और जानकी के चरणों में मेरा सहज स्नेह बना रहे। निषाद राज चलो चलकर मुझे वे सब स्थान दिखलाओ जहां राम लक्ष्मण और सीता ने शयन किया था, जिससे मेरे नेत्रों को शांति मिले और मन की जलन मिटे।
0: जब भरत जी ने उन स्थानों को देखा तो उनके अंतर से जो प्रीति उमड़ी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चरण रेख रज आंखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। वो बार बार राम सीता और लक्ष्मण की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे।

0: धिक कह कई अमंगल मूला, भय सि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं थिक थिक अघ उदति अभागी, सब उत्पात भयउ जेहि लागी। मैं पापों का समुद्र हूँ, अभागा हूँ, मुझे धिक्कार है। मेरे ही कारण ये सारा बखेड़ा उठ खड़ा हुआ है। कुल कलंक कर सृजऊ विधाता, साई दोह मोहि कीन कुमाता।
1: नाथ, आप व्यर्थ क्यों अपना जी छोटा कर रहे हैं? आप राम को प्यार करते हैं और राम आपको प्यार करते हैं। विधि बाम की करनी कठिन, जिहि मातु कीनी भावरी। ते राति पुनि पुनि करही, प्रभु सादर सराहना रावरी। मैं सौगंध खाकर कह सकता हूँ कि राम किसी को भी उतना प्रिय नहीं समझते जितना आपको। विश्वास कीजिए, अंत में सब मंगल ही मंगल होगा।
2: निषाद के इस प्रकार बार बार धीरज धराने पर भरत विश्राम करने के लिए चले गए। सवेरे बहुत जल्दी उन्होंने गंगा नदी को पार किया और सीताराम सीताराम रटते हुए प्रयाग पहुंच गए। भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए थे। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी ने भाव विह्वल होकर त्रिवेणी की स्तुति की।
0: अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूं निर्बान। जनम जनम रति राम पद,

0: यहाँ पर दान न आन।
1: तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, वाद गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही।
2: इसके पश्चात भरत जी ने मुनिवर भरद्वाज के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया। मुनिवर ने भरत जी से कहा, मैं तो तुम्हें देखकर यही समझ रहा हूँ मानो राम का प्रेम ही तुम्हारा रूप धरे चला आया है। भरत जी ने अपनी व्यथा प्रकट की। भरद्वाज मुनि के समझाने पर वे कुछ शांत हुए और एक रात वहाँ बिताकर सवेरा होते ही मुनि को प्रणाम कर वे निषाद राज के हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ गए। जैसे साक्षात प्रेम ही दो शरीर धारण किए चला जा रहा हो। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागु। मार्ग में जो भी भरत को देख लेता ऐसा लगता मानो उसने परम पद पा लिया है। गांव गांव के स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर उन्हें देखने के लिए दौड़े चले आते। प्रेम में मगन हो वे ऐसी अटपटी बातें करते कि मन उमड़ उमड़ पड़ता।
3: कौन आ रहे हैं?
4: ऐसा लगता है जैसे सचमुच राम लक्ष्मण चले आ रहे हैं।
3: अच्छा,
4: राम लखन सखी हो ही कि नाही? बै बप्पू बरन रूप सोई आली, सीलु सनेहो सरिस सम चाली।
3: बेशु न सो सखी सीय न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई एही भेदा।
4: ना ना, तुझे क्या वो कहानी नहीं मालूम कि किस प्रकार राम को राज तिलक मिलने वाला था और किस प्रकार भरत की माता कैकेयी ने विघ्न डाला? लेकिन सखी, भरत तो भरत ही हैं।
3: देखो तो, चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजिराज, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आज।
4: हाय, कैकेयी माँ की कोख से ऐसा योगी पुत्र कैसे हुआ?
3: इसमें रानी का क्या दोष? ये सब करतूत तो विधाता की ही है, पर हमारे लिए तो ये अच्छा ही हुआ। हम ओछे कुलों वाली, मलिन कर्म करने वाली, बुरे गांव में रहने वाली, हमें इनके दर्शन मिले।
4: सच सखी, हमने कोई बड़े ही पुण्य कर रखे थे जिस कारण आज हमें इनके दर्शन हुए।
2: भरत के दर्शन पाकर रास्ते के लोगों के भाग्य खुल गए। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कलप तरु जामा। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते थे अच्छे अच्छे शकुन होते जाते थे। उन्हें विश्वास हो चला था कि राम अवश्य मिलेंगे। प्रेम की मदिरा में सब ऐसे मस्त थे कि मुख से ठीक ठीक शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। शिथिल अंग पग मग डग डोलहीं, बिह्वल बचन प्रेम बस बोलहीं। उसी समय निषाद राज ने कहा,
5: नाथ वो देखिए, वो है चित्रकूट पर्वत। उसके समीप ही मंदाकिनी के तट पर सीता जी के साथ दोनों भाई कुटी बनाकर निवास करते हैं।
6: वो है चित्रकूट पर्वत कामदगिरी, वहां रहते हैं मेरे राम। सीतापति राम की जय, सीतापति राम की जय।
4: नाथ, मैंने स्वप्न में देखा है कि आपके विरह की तपन से अपनी देह तपाए हुए भरत जी सारा समाज साथ लिए चले आ रहे हैं और सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी।
7: लक्ष्मण, यह स्वप्न कुछ अच्छा नहीं है। जान पड़ता है कोई बहुत बुरा समाचार आने वाला है। देखो तो, आकाश धूल से भर गया है। पशु पक्षी घबराए हुए आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। बात क्या है?
8: नाथ, नाथ, भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ इधर ही आ रहे हैं।
7: भरत आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं?
8: नाथ, उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी है।
7: सेना है?

0: चरणों में उनकी प्रीति भी है। लेकिन तेउ आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई।
1: लक्ष्मण,
0: वे समझते हैं राम वन में अकेले हैं, इसलिए सेना लेकर आ रहे हैं।
1: लक्ष्मण, लेकिन
0: लेकिन क्या? अगर उनके मन में कपट ना होता तो सेना क्यों लाते? भरत ही दोसु देह को जाई, जग बौराई राजु पद पाई। नाथ, मेरे कहने का बुरा ना मानिएगा, उन्हीं के कारण हमें ये दिन देखना पड़ा है। अब और नहीं सहा जा सकता। मैं क्षत्रिय हूँ, रघुकुल में मेरा जन्म हुआ है, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं क्षण भर में भरत को सिखा दूंगा कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। राम निरादर कर फल पाई, सो वहु समर सेज दो भाई। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ, जो सहाय कर संकर आई, तो मारूं रन राम दुहाई।
2: तात, तुम्हारा प्रताप सभी जानते हैं, किंतु सोच विचार कर ही कोई कदम उठाना चाहिए।
1: लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। संसार में यदि सबसे बुरा कोई मद है तो वह राजमद है। लेकिन जहां तक भरत का प्रश्न है, उनके समान श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं हुआ। सुनो, भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहू की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अंधकार भले ही सूरज को निकल जाए, आकाश भले ही बादल में खो जाए, पृथ्वी भले ही अपना स्वभाव छोड़ दे, मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भरत को राजमत कभी नहीं सता सकता। लखन, तुम्हार सपत पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना।

0: जिस समय श्री राम जी लक्ष्मण जी को इस प्रकार समझा रहे थे, उसी समय भरत जी निषाद राज के साथ श्री राम की ओर आ रहे थे। उनका मन शंकाओं से भरा हुआ था। सोच रहे थे कि कहीं मेरे आने का समाचार पाकर राम चले न जाएं। तभी निषाद राज ने टीले पर चढ़कर बरगद का वो पेड़ दिखाया जिसके समीप राम की कुटिया थी। फिर तो जहां भी भरत जी राम के चरण चिन्ह देख लेते, उसकी धूल उठाकर सिर माथे पर लगाते। उस समय वे इतने प्रेम विभोर हो उठते कि उनकी दशा देखकर जीव ही नहीं जड़ भी प्रेम में डूब जाते। धन्य है भरत, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। उसी समय उन्होंने राम को देखा। लसत मंज मुनि मंडली मध्य सीय रघुनंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सच्चिदानंद। उनका मन प्रेम से मगन हो उठा। हर्ष शोक सुख दुख सब भूलकर वे पुकारते हुए धरती पर गिर पड़े।
1: हे नाथ रक्षा करो, हे स्वामी रक्षा करो, रक्षा कर, रक्षा कर।
2: भगवान भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं।
0: उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। बर बस लिए उठाई उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसरे सब ही अपान। इस मिलन के प्रेम का वर्णन कैसे किया जा सकता है? कोई भी कवि मन वचन और कर्म से इसका

0: प्रयत्न नहीं कर सकता। दोनों भाई सुध-बुध फूलकर परम प्रेम में उमगे जा रहे थे। सीता जी तो इतनी विफल हो उठी थी कि बोल ही नहीं सकी। वास्तव में उस समय न तो किसी ने कुछ कहा ही, न किसी ने कुछ पूछा ही, क्योंकि सबका मन इतना प्रेममय था कि कुछ सूझ नहीं रहा था। किसी तरह साहस करके निषाद राज ने कहा,
1: हे नाथ, मुनिराज वशिष्ठ के साथ सब माताएं, अयोध्या के नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर आपसे मिलने यहाँ आए हैं।
0: सुनते ही राम उधर चल पड़े। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को प्रणाम किया, फिर अपनी माताओं को देखा जैसे सुंदर लताओं को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई, पग परिकीन प्रबोध बहुरी, काल करम विधि सिर धरि थोरी। इस प्रकार सभी को सांत्वना देकर और सबसे स्नेह से भेंट करके वे आश्रम की ओर लौटे। वहां फिर मिलन समारोह शुरू हो गया। सीता ने अपनी सासुओं को देखा तो एकाएक सहमकर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो राज हंसिनिया बधिक के हाथ में पड़ गई हूं। और जब मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनाया तो सबके करुण क्रंदन से वो वन प्रांतर कातर हो उठा। लगा जैसे महाराज का स्वर्गवास उसी दिन हुआ हो। मुनि वशिष्ठ के समझाने पर सब लोगों ने स्नान किया और दो दिन का व्रत रखा। उसके बाद दो दिन और वे उस वन प्रांतर में घूमते रहे। वनवासी, कोल, किरात और भील उनका नाना प्रकार से स्वागत करते। उनका प्रेम देखकर अयोध्यावासी लज्जित हो उठते, सोचते, राम से इनको इतना प्रेम है, उसके सामने हमारा प्रेम तो कुछ भी नहीं।

0: लेकिन सबके मन शंकाओं से भरे हुए थे। राम लौटेंगे भी कि नहीं? तभी गुरु वशिष्ठ ने भरत को बुला भेजा, कहा, सबको सुख देने वाला तो एक ही काम है कि राम का राज तिलक हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि राम अयोध्या वापस कैसे जाएंगे?
1: हे मुनिश्रेष्ठ, आप ही कुछ उपाय सुझाइए।
0: इसका एक ही मार्ग है और वो ये है कि तुम दोनों भाई वन में रहो और लक्ष्मण सीता सहित राम लौट जाए।
1: मैं तो जन्म भर वन में वास करने को तैयार हूं, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। हे गुरुदेव, राम और जानकी तो सबके हृदय की बात जानते हैं और आप भी सर्वज्ञ हैं, इसलिए आपने जो निश्चय किया है उसे पूरा कर डालिए।
0: भरत के ये वचन सुनकर और उनका ऐसा स्नेह देखकर मुनि वशिष्ठ सहित सभी लोग गदगद हो उठे। भरत की विराट महिमा का पार कौन पा सकता है? भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। इसलिए वे उनको लेकर राम के पास पहुंचे, बोले,
2: भद्र राम,

0: तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालो जिससे सबको संतोष हो। हम लोग बहुत दुखी हैं, अपना हित अनहित कुछ नहीं सोच पा रहे हैं।
1: गुरुदेव, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? उपाय तो सब आपके हाथों है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं पालन करूंगा।
0: राम, तुमने बात तो ठीक कही, पर भरत के स्नेह का विचार नहीं किया। मेरी बुद्धि तो भरत के हाथ बिक चुकी है। मैं शिव की दुहाई देकर कहता हूं कि तुम भरत की इच्छा का ध्यान रखते हुए जो कुछ भी करोगे उसी से सबका कल्याण होगा। इसलिए पहले भरत की प्रार्थना सुन लो।
1: गुरुदेव, मुझे आपकी सौगंध है। नाथ सपथ पितु चरण दुहाई, भय उन भुवन भरत सम भाई। जिस भरत पर आपका इतना स्नेह है, उसके सौभाग्य का वर्णन भला कौन कर सकता है? वे मेरे छोटे भाई हैं, उनके मुंह पर उनकी बड़ाई करने में मुझे संकोच हो रहा है। जो कुछ भी वे कहेंगे वैसा ही करने में मैं भलाई समझता हूं।
0: तब हे भरत, तुम संकोच त्याग कर अपने मन की बात कह डालो।
2: मैं क्या कहूं, मुझसे बड़ा पापात्मा इस संसार में कोई नहीं।
1: देखो भाई, जहां तक मेरी बात है, मैं तो तुम्हें भली भांति जानता हूं, पर मैं करूं तो क्या करूं? जिन महाराज ने मेरे प्रेम और सत्य की रक्षा के लिए प्राण तक त्याग दिए, उनकी बात कैसे टालूं? उधर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी बात का ध्यान रखूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं।
2: हे स्वामी, आप वही कहिए जिससे आपके चित्त में किसी प्रकार की उलझन पैदा ना हो, क्योंकि जो सेवक अपने स्वामी को उलझन में डालकर अपना भला करना चाहता है, उसके समान नीच कोई नहीं हो सकता। यदि आप लौट चलते तो सबका हित होता, पर आपकी आज्ञा पालन करना उससे भी कई करोड़ गुना अच्छा है। स्वारथु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वारथ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। मैं राज तिलक की सामग्री ले आया हूं, आप उसे स्वीकार करके सफल कर दीजिए। मुझे छोटे भाई के साथ वन में छोड़ दीजिए और आप राज्य संभालिए। यदि आप वन ही में रहना चाहते हैं तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न को अयोध्या लौटा दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगा। या फिर हम तीनों भाई वन में रह जाते हैं, आप सीता जी सहित लौट जाइए। इनमें से जो भी प्रस्ताव ठीक लगे स्वीकार कीजिए, मुझ पर निर्णय मत छोड़िए। कहूं वचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत केचित चेतु।
3: धर्म सारा सागर।
0: कुछ निश्चय हो पाता कि समाचार मिला राजा जनक आ पहुंचे हैं। एक बार फिर उस मिलन समारोह में करुण रस की सरिता प्रवाहित हो चली। सीता की माता राम की माताओं से मिलने आई। वो मिलन भी कैसा अपूर्व था। माता कौशल्या बार बार जनक पत्नी से यही कहती थी कि राजा जनक लक्ष्मण को लौटा ले चलें और भरत को वन में रहने दें। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहें नीक मोहि लागत नाही। लेकिन भरत और राम के प्रेम को तर्क से नहीं समझा जा सकता। सब यही चाहते थे कि राम राजा हों और भरत युवराज। सभी निरंतर इसी प्रश्न को लेकर विचार विनिमय कर रहे थे। सभा फिर जुड़ी। मुनि वशिष्ठ ने भरत के उच्च विचारों का परिचय देते हुए कहा,
4: राम, मैं तो यही कहता हूं कि तुम जो आज्ञा दोगे वही सब लोग मान लेंगे।
1: हे नाथ, जहां आपके साथ मिथिलेश जैसे महापुरुष विद्यमान हो, वहां मेरा कुछ भी कहना धृष्टता होगी। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं कि आप तथा मिथिलेश जो भी आज्ञा देंगे वही मैं शिरोधार्य करूंगा।

0: आप लोग मेरा यह अत्यंत अनुचित व्यवहार क्षमा कर दीजिए। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूं बदन मृदु बचन कठोरा। हे राम, आप मेरे माता पिता गुरु स्वामी और मित्र सभी कुछ हैं, परम हितकारी और अंतर्यामी भी हैं। अपने अज्ञान के कारण आपके और पिताजी के वचन टालकर ये सारा समाज लेकर यहां चला आया हूं। ये बड़ी ढिठाई में कर रहा हूं। आप मुझे यही समझकर क्षमा कर दीजिए कि मेरा जी बहुत दुखी है। अब आप आज्ञा दें और वही करें जिसमें मेरा कल्याण हो। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावे देवा।
1: भाई भरत, तुम धर्म धुरीण हो, तुम्हारा प्रेम अनुपम है, मन वचन कर्म से तुमने कभी कोई दोष नहीं किया। तुम सूर्य वंश के नियम को, सत्य का पालन करने वाले पिता को, समय को, समाज की दशा को, गुरुजनों की मर्यादा को, मित्र और शत्रु सबके मन को समझते हो। किसका क्या कर्तव्य है यह भी तुम जानते हो, और यह भी जानते हो कि कर्तव्य का पालन करने में ही तुम्हारा और मेरा हित है। इसीलिए भाई, तुम वही काम करो और मुझसे भी वही कराओ जिससे सूर्य कुल की मर्यादा की रक्षा हो।
0: किंतु आप मुझे संकट में
1: असह्य संकट सहने पर भी तुम प्रजा और परिवार को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करो। तुम्हें कोमल जानकर भी मैं ऐसा कठोर आदेश दे रहा हूं, लेकिन विपत्ति में अच्छे भाई उसी प्रकार सहायता करते हैं जैसे बाण का आघात होने पर स्वयं अपना हाथ आड़े आकर उसे रोक लेता है।
0: हे नाथ, आपके वचन सुनकर मुझे वही सुख प्राप्त हो गया जो आपके साथ वन जाने में मिलता। अब कृपालु जस आयस होई, करो शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पारु पावो जेसे। मेरे मन में एक और भी लालसा है, पर संकोच के कारण कह नहीं पाता।
1: कहो कहो, संकोच की क्या बात है?
0: यदि आपकी आज्ञा हो तो चित्रकूट के मुनियों के आश्रम, तीर्थ, वन प्रांतर, विशेषकर आपके चरण चिन्हों से अंकित ये धरती घूमकर देखाऊं।
1: भाई, यहां मेरी नहीं अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर निर्भय होकर वन में विचरण कर सकते हो। उन्हीं के प्रसाद से इस जंगल में मंगल छाया हुआ है।
2: राम और भरत की यह वार्ता सुनकर सब लोगों को हर्ष भी हुआ और विषाद भी। विषाद इसलिए कि राम को अब वन में ही रहना पड़ेगा। माता कौशल्या ने समझ लिया कि संसार में जितना सुख है उतना ही दुख भी है। राम मातु दुख सुख सम जानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। उधर अत्रि मुनि की आज्ञा लेकर भरत 5 दिन तक उस पवित्र वन में घूमते रहे। उसके बाद एक बार फिर सभा स्थल पर इकट्ठे हुए। राम संकोच के कारण कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन भरत उनके मन का भाव ताड़ गए। धीर गंभीर स्वर में वे बोले,
0: हे नाथ, आपने मेरी सारी अभिलाषाएं पूरी कर दी। मेरे कारण सब लोगों को और आपको भी बहुत कष्ट हुआ। अब मुझे वो आधार तो दीजिए जिसके आदेश पर मैं 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करता रहूं। इस अवधि में मुझे क्या करना होगा ये भी समझाइए।
3: धन्य हो,
4: धन्य हो,
3: धन्य हो,
4: धन्य हो,
3: धन्य हो।
1: भाई, जब तक गुरु वशिष्ठ और राजा जनक जीवित हैं, हमें और तुम्हें स्वप्न में भी किसी बात का कष्ट नहीं हो सकता। हमारा कल्याण इसी बात में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। जो गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता है, उससे यदि भूल में कोई बुरा काम भी हो जाए तो वो बुरा नहीं समझा जाता। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पालें, चले हो कुमग पग पर ही न खालें। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अयोध्या जाओ।

0: और प्रजा का पालन करो।
1: लेकिन मेरा आधार?
0: तुम्हारा आधार तुम स्वयं हो।
1: नहीं।
0: तब
1: आपकी चरण पादुकाएं, मैं उन्हीं से आदेश लेकर प्रजा का पालन कर पाऊंगा।
0: जैसी तुम्हारी इच्छा।
2: श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की।

0: रह जाओ और प्रजा का पालन करो।
1: लेकिन मेरा आधार?
0: तुम्हारा आधार तुम स्वयं हो।
1: नहीं।
0: तब
1: आपकी चरण पादुकाएं, मैं उन्हीं से आदेश लेकर प्रजा का पालन कर पाऊंगा।
0: जैसी तुम्हारी इच्छा।
2: श्री रामचंद्र की जय।

0: ऐसा श्रेष्ठ अवलंब पाकर भरत फूले नहीं समाए। उन्हें अब ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे सीता और राम के साथ रहने में होता। लेकिन अभी तो विदा का वो पावन और विषाद से भरा दृश्य शेष था। सब एक दूसरे से भेंट करते नहीं अघाते थे। तन मन वचन सब कहीं प्रेम ही प्रेम उमड़ा पड़ रहा था। मेरी काव्यवाणी उस दृश्य का वर्णन नहीं कर पाएगी। उसका स्मरण करते ही वो लज्जा से सकुचा गई है। विशेषकर सीता जिस समय अपने परिजनों से मिलकर लौटी और अपनी सासुओं से भेंट की, उस प्रीति का वर्णन करने के लिए तो कवि के हृदय में तनिक भी शक्ति नहीं रही है। परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिरी प्राण प्रिय प्रेम पुनीता, करी प्रणाम भेटी सब सासु, प्रीति कहत कभी ही न हुलासु। लेकिन इस पर्व का भी अंत आना था। सबको विदा करके राम लक्ष्मण और सीता परिजनों के वियोग में बहुत देर तक दुखी मन बैठे रहे और भरत के प्रेम तथा स्वभाव का बखान करते रहे। भरत स्नेह स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुज सन कहत सबानी। उधर भरत जनक और वशिष्ठ राम के विरह में बड़े अनमने से उनका गुणगान करते हुए चौथे दिन अयोध्या पहुंच गए। राजा जनक ने 4 दिन वहां ठहर कर सब प्रबंध किए, फिर वे जनकपुर लौट गए। धर्मात्मा भरत ने शत्रुघ्न को माताओं की सेवा का भार सौंपा और गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया।
1: गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं इस अवधि में विशेष नियम का पालन करना चाहता हूं।
2: समुझब करब कहब तुम जोई, धर्म सारु जग होई है सोई।
0: गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी ने शुभ मुहूर्त में राम के चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया और स्वयं अयोध्या के दक्षिण में स्थित नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। उन्होंने राज सुख छोड़ दिया और तापस वेश धारण कर लिया। अबध राज स्वर राज सिहाई, दशरथ धनु सुन।

काग रूपधारी भयभीत जयंत सब कहीं मारा मारा फिरा। ब्रह्मलोक शिवलोक समस्त लोकों में पुकारता हुआ अंत में नारद जी द्वारा प्रेरित वो श्री राम की शरण में ही आया। आतुर और भयभीत जयंत ने श्री राम से अपनी रक्षा की प्रार्थना की, भांति भांति से अपने किए पापों के लिए क्षमा मांगी। श्री राम जी ने उसे अपनी शरण आया जान, एक नयन करी तजा। इस प्रकार चित्रकूट में रहते हुए श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए। वहां से विदा होते समय वे अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने श्री राम की अनेक प्रकार स्तुति की।

सीता जी ने विनम्र भाव से अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया की चरण वंदना की। अनसुया जी ने उन्हें शुभाशीष देकर पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया।

छवि का वर्णन मैं किन शब्दों में करूं। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर बेख बने अति काछे। उभय बीच श्री सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। मार्ग में जाते हुए विराध राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। फिर शरभंग मुनि का उद्धार कर श्री राम आगे बढ़े, श्रेष्ठ मुनियों के समूह उनके साथ हो लिए। श्री राम ने आगे चलकर एक विशाल अस्थि समूह देखा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि राक्षसों ने सभी ऋषि मुनियों को मारकर खा लिया है, ये उन्हीं की हड्डियों का ढेर लगा है। इससे श्री राम जी के नेत्रों में आंसू छलक आए। ऋषि मुनियों को भयभीत जानकर उन्होंने निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दीन। इसके पश्चात आगे चलकर श्री राम जी ने सुतीक्ष्ण की अविचल और निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। मुनि सुतीक्ष्ण ने श्री राम की इन शब्दों में स्तुति की।

सुतीक्ष्ण की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री राम जी ने उन्हें अपनी अविचल भक्ति प्रदान की। फिर वे श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम में आए। दोनों भाइयों ने आदर पूर्वक अगस्त्य जी को प्रणाम किया। उनसे आशीर्वाद और निर्देश पाकर वे पंचवटी के निकट जा पहुंचे। वहां दंडकवन में गृध्रराज जटायु से उनकी भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर श्री राम जी गोदावरी नदी के निकट पर्णकुटी बनाकर रहने लगे।

0: लक्ष्मण जी की जिज्ञासा पर श्री राम ने उन्हें ज्ञान, वैराग्य, माया, ईश्वर, जीव आदि के संबंध में विस्तार से समझाया। भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख का अनुभव किया और प्रभु के चरणों में सिर नवाया। यही विधि गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। तब एक दिन क्या हुआ,
1: सुंदर तनिक इधर तो देखिए।
2: कौन, क्या है?
1: देखिए तो तुम सम पुरुष न मौसम नारी।
2: क्या
1: हैरान न हो, ये संजोग विधि रचा बिचारी।
2: कैसा संजोग?
1: मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक तिहु नाही।
2: तो
1: ताते अब लगी रहूं कुमारी।
2: कुमारी?
1: हाँ। मनु माना कछु तुम्हें निहारी।
2: कुमारी उधर देखो, अहि कुमार मोर लघु भ्राता।
1: कुमार
3: सुंदरी सुनो, मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा।
1: लेकिन कुमार मैं तो आपको।
3: सुंदरी मैं तो एक छोटा सा सेवक मात्र हूँ, प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा, जो कछु करहीं उन्हीं सब छाजा।
1: किंतु तुम्हारे लिए भी तो सब कुछ संभव है कुमार।
3: नहीं सुंदरी, नीति कहती है सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति विभिचारी, लोभी जस चह चार गुमानी, नव दुहि दूध चहत ए प्राणी। असंभव, बिल्कुल असंभव।
1: कुमार आप पढ़े हैं, आप ही मुझे।
2: नहीं सुंदरी, मेरा छोटा भाई ही उपयुक्त है।
1: कुमार तुम ही मुझे अपनाओ, ऐसा भरपूर यौवन, मोहक सुंदरता, 16 श्रृंगार से सजी हुई ये देह तुम्हारे ही वरण करने योग्य है कुमार।
3: निर्लज्ज तो ही सो बरई, जो त्रिन तोरी लाज परिहरई। चल दूर हो यहां से।
1: देखती हूं।
2: लक्ष्मण क्या देखते हो?
3: ले ले पापिष्ठे, तेरे लिए यही दंड।
4: अपनी दुर्दशा का कुछ कारण तो बताओ।
1: कारण? कारण पूछते हो? जाकर राम और लक्ष्मण नाम के उन दो कुमारों से बदला लो।
4: तो क्या?
1: हाँ हाँ, उन्हीं कुमारों के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। हे भाई जाओ और उन लोगों से मेरे अपमान का बदला लो।
5: योद्धा युद्ध का बिगुल बजाओ और उन दोनों भाइयों को जीते जी पकड़ लो।
2: लक्ष्मण यह कोलाहल सुन रहे? आकाश में उड़ती हुई इस धूल से लगता है कि असुर समूह अपना आतंक दिखाने को आतुर है। वो देखो, राक्षसों की भयानक सेना आ पहुंची। भाई लक्ष्मण, सीता को तुम पर्वत की गुफा में ले जाओ। सावधान रहना।

0: अब लोग निज दल विकल भटति तरासि कर
1: भूत। घनघोर संग्राम हुआ, खर और दूषण मारे गए। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर मायापति श्री राम ने ऐसा कौतुक किया कि शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम समझकर आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। उधर तो राक्षस राम राम कहीं तनु तजहि पावहि पद निर्माण, और इधर करी उपाय रिपु मारी छन मऊ कृपा निधान। फिर शत्रुओं के नष्ट हो जाने पर लक्ष्मण जी सीता जी को गुफा से बाहर ले आए। यहां तो पंचवटी में श्री राम ने देवता और मुनियों को सुख दिया, वहां लंका जाकर शूर्पणखा ने रावण को भड़काया।
2: अरे लंकेश, तूने अपने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। करसी पान सोवसी दिन राती, सुधि नहीं तब सिर पर आ राती। क्या तू इतना भी नहीं जानता कि शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सांप को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। अरे दशकंधर, तेरे जीते जी मेरी ये दशा।
3: अरे पहले ये तो बता कि तेरे नाक कान किसने काट लिए।
2: हाँ बैठे बैठे क्या पूछते हो, वहाँ वन में जाकर देखो। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह वन खेलन आए।
3: तो फिर क्या हुआ?
2: तुम नहीं समझोगे, मैं तो उनके कामों को देखकर समझ गई हूँ कि वे दोनों भाई पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे।
3: अरे तू उन बालकों से डर गई?
2: देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना, अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खलवध रथ सुरमुनि सुखदाता।
3: तू उनका नाम तो बता।
2: शोभा धाम राम असनामा,
3: और
2: तिनके संग नारी इक श्यामा, रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी।
3: तो क्या राम ने?
2: नहीं, तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तब भगिनी करी ही परिहासा।
3: क्या तेरी पुकार किसी ने नहीं सुनी?
2: मेरी पुकार खरदूषण ने सुनी, वे अपनी विशाल सेना लेकर मेरी सहायता को आए, लेकिन दोनों भाइयों ने सारी सेना को मार डाला।
3: और खरदूषण?
2: उन राजकुमारों ने खरदूषण और त्रिशरा को भी मार डाला।
3: उन राजकुमारों का इतना साहस, क्या वे लंकाधिपति की शक्ति को नहीं जानती? शूर्पणखा, जा तू विश्राम कर, दोनों कुमार अपने किए का फल भोगेंगे।
4: सारी रात मुझे करवटें बदलते बीत गई, एक क्षण को भी नींद नहीं आई, पल भर को भी पलके नहीं लगी। आखिर यह सब कैसे हुआ? देवता मनुष्य नाग और पक्षियों में कहीं भी तो कोई ऐसा नहीं जो मेरे किसी सेवक की भी बराबरी कर सके। फिर खरदूषण कैसे मारे गए? वे भी तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है? तो क्या ये कुमार भगवान का ही अवतार है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाय बैर हट करूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरं। अब इस तामस देह से भजन तो होगा नहीं, इसलिए मन वचन और कर्म से मेरा यही दृढ़ मंत्र है। और अगर

0: मनुष्य के रूप में किसी राजा के पुत्र होंगे, तो उन दोनों को संग्राम में जीत कर उनकी स्त्री को छीन लूंगा।
1: रावण इस प्रकार का निश्चय कर अकेला ही रथ पर चढ़कर समुद्र तट पर रहने वाले मारीच के पास चला गया। इधर श्री राम ने एक अन्य ही युक्ति रच डाली। लक्ष्मण जी जब फल फूल कंद मूल लेने गए हुए थे तो श्री राम ने सीता जी से कहा, अब मैं कुछ मनोहर नर लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। सीता जी श्री राम के आदेशानुसार प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर अग्नि में समा गईं। किंतु सीता जी ने अपने ही जैसी शील स्वभाव और रूप वाली विनम्र छाया मूर्ति वहां छोड़ दी। लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। इधर तो ये लीला हो रही थी, उधर रावण की मंत्रणा और भय के कारण

0: आर्यपुत्र वो देखिए, वो कितना सुंदर है वो मृग। सोने का शरीर और उस पर जड़ी हुई मणियां, कितना मनोहर है ये हरिण।
1: हाँ, है तो।
0: सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, ए मृग कर अति सुंदर छाला। हे सत्य प्रतिज्ञ, इसे मारकर इसका सुंदर चर मुझे ला दीजिए।
1: जैसी तुम्हारी इच्छा देवी। लक्ष्मण।
2: देव, अरे आपने तो परिकर भी कस लिया, धनुष पर बाण का भी संधान कर लिया।
1: लक्ष्मण, सीता की इच्छा है कि मैं उस स्वर्ण मृग को मारकर उसका चर्म इन्हें ला दूं। मैं ऐसा ही करूंगा, किंतु भाई वन में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं, अतः तुम सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी।
2: जैसे प्रभु की आज्ञा।
0: लक्ष्मण, लगता है तुम्हारे भाई संकट में है, जाओ तुम शीघ्र ही उनकी सहायता को जाओ।
2: माता, भक्ति विलास सृष्टि लय हुई, सपने हो संकट परे की सोई।
0: ये बातें बनाने का समय नहीं है।
2: लगता है कठोर सत्य को आप समझ नहीं पा रही हैं।
0: और मुझे लगता है कि कायरता ने तुम्हारी बुद्धि और बल को हर लिया है। तुम जाते हो कि नहीं?
2: आपकी आज्ञा से मैं चला तो जाता हूँ, परंतु।
0: परंतु क्या?
2: कुछ नहीं, ये रेखा खींच रहा हूं, इसका उल्लंघन करने पर आपको कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, स्मरण रखना।
3: नारायण नारायण नारायण।
1: देव,
0: यतिवर,
1: कथा कहानी सुनने में रुचि रखती हो?
0: आपकी कृपा है यतिवर।
1: राजनीति का उपदेश कैसा रहेगा राजकुमारी?
0: आपकी कृपा से वो तो मैं सुनती ही रही हूँ।
1: तब क्या प्रेमालाप?
0: गुसाई जी, आप साधु का वेश धारण किए हैं और इस प्रकार कामी पुरुषों की जैसी चेष्टाएं कर रहे हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता।
1: मुझे उपदेश करती है? मेरे नाम और शक्ति शायद तू परिचित नहीं है।
0: यतिवर, इस प्रकार दुष्टों की जैसी चेष्टाएं करके आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? मुझे तो आपके साधु होने में ही संदेह है, आखिर आप हैं कौन?
1: ले देख मेरा असली रूप। तेरे सामने लंकाधिपति रावण खड़ा है, तेरी अनंत रूप राशि का भिखारी।
0: अरे अरे दुष्ट, तेरा इतना साहस, खड़ा तो रहे, वो देख स्वामी आ गया।
1: कहां है तेरे स्वामी? आ, इस रथ पर बैठ और मेरे साथ चल।
0: रघुकुल कमल देवाकर, तुम कहो किस अपराध से मुझे भुला बैठे? देखो ये पापी मुझे बलपूर्वक लिए जा रहा है। देखो लक्ष्मण, तुम्हार नहीं दोसा, सो फल उपायो के नेवरोसा। स्वामी, स्वामी की कृपा तो मुझ पर बहुत है, पर वो स्नेही प्रभु सब में दूर है। प्रभु को मेरी ये विपत्ति कौन बताए? और गुनाह और लक्ष्मण।

0: के सीते पुत्री करे से जनित्रा था करिहु जात धान करना था रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई नरे भय चले सी न जाने ही मोही
1: कि मैं नाग की खगपति होई मम बल जान सहित पति सोई। ओह ये तो बूढ़ा जटायु है, ये अवश्य ही आज मेरे हाथ रूपी तीर्थ में अपने शरीर का परित्याग करेगा।
0: रावण मेरी बात सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो राम रोष पावक अति घोरा हो ही सकल सलब कुल तोरा।
1: अरे बूढ़े जटायु ठहर,
2: शायद तेरा काल ही तुझे यहां खींच लाया है।

0: वृद्धराज जटायु को घायल कर रावण सीता जी को ले चला। विलाप करती हुई सीता जी आकाश मार्ग से जाते हुए पर्वत पर बैठे हुए वानरों को देखकर राम जी का नाम लेकर वस्त्रालंकार आदि फेंकती चली गई। रावण ने सीता जी को ले जाकर अशोक वन में रखा। इधर लक्ष्मण जी से सीता जी के संबंध में समाचार पाकर श्री राम जी बहुत दुखी हुए। पर्णकुटी को सीता जी से रहित देखकर वे बहुविध विलाप करने लगे।
1: हाँ गुणखानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता, तुम कहाँ हो प्राण वल्लभे, तुम कहाँ हो? हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी?
2: तात विषाद का परित्याग कीजिए, आपके समान धीर पुरुष संसार में दूसरा नहीं है।
1: सुनो जानकी, तो ही बिन आजू हर से सकल पाई जन राजू।
2: तात देखिए, सारा वन प्रदेश पार कर हम कहां आ पहुंचे।
1: राम राम राम।
2: तात
1: राम।
2: इधर देखिए, कोई पंख कटा विशाल पक्षी दम तोड़ रहा है।
1: राम। अरे राम। अरे ये तो गृधराज जटायु है। तात तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी इस दुर्गति का कारण कौन है?
3: नाथ दशा नन ये गति कहनी, तहीं खल जनक सुता हर लीनी।
1: तात जानकी किधर है, किधर गया है दशानन?
3: ले दक्षिण दिशी गयो गोसाई, बिलपति अधिक कुररी की नाई,

0: उन्हीं के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है तात।
1: दरअसल लागे प्रभु राखे प्राण, चलन चहत अब कृपा निधाना।
0: तात, आप अपने देह की रक्षा कीजिए।
1: नाथ, मरते समय जिनका नाम मुख पर आ जाने से पापी भी मुक्त हो जाता है, सो मम लोचन गोचर आगे राखो देह नात के खा गए।
0: तात, आपने अपने शुभ कर्मों से ही सदगति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहो जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाहु मम धामा, देउ काह तुम पूरन कामा।
1: नाथ, ये सब आपकी कृपा है।
0: मेरी मेरी एक प्रार्थना है।

0: तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। इसके पश्चात दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए और वन की सघनता देखते हुए आगे चले। मार्ग में उन्होंने कबंध का वध किया, उसे गति देकर श्री राम जी भाई सहित शबरी के आश्रम में पधारे। दोनों भाइयों को देखकर शबरी उनके चरणों से लिपट गई, प्रेम मगन मुख वचन ना आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे।
1: प्रभु, मेरा अहोभाग्य आप इस दीन की कुटिया में पधारे। कंदमूल के सिवा इस दीन के पास और है ही क्या? कृपा कर आप यही ग्रहण कीजिए प्रभु।
2: देवी, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट फल है। इनके माधुरी के सामने षटरस व्यंजन भी व्यर्थ है।
1: प्रभु, केहि विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती आभारी। मैं तो बहुत ही पापनी और मंद बुद्धि हूं प्रभु।
2: देव, मेरी बात सुनिए, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन कुन चतुराई, भगति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारित देखिया जैसा। और मैं देख रहा हूं कि शास्त्रों में बताई गई जो नौ प्रकार की भक्ति है वह सब तुम में दृढ़ रूप में विद्यमान है। इसलिए योगियों को भी जो गति दुर्लभ है वही आज तुम्हें सुलभ हो गई।
1: ये सब आपकी कृपा है प्रभु।
2: देव, अब अगर तुम्हें जानकी का कुछ भी पता हो तो कृपा कर हमें बता दो।
1: पंपा सरही जाऊ रघुराई, तहां होई ही सुग्रीव मिताई, सो सब कहे ही देव रघुबीरा, जानत हो पूछो मत धीरा।
0: इस प्रकार शबरी ने नमस्कार प्रभुपद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। श्री राम जी को सारी कथा सुनाकर हृदय में उनके चरण कमलों का ध्यान करके वो योगाग्नि में देह त्याग कर दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई। तदनंतर अनेक कथा संवाद कहते श्री राम जी और लक्ष्मण जी वन की छटा निरखते पंपासर जा पहुंचे। वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम चले गए। तभी नारद मुनि ने सीता हरण की घटना से व्यथित सीता जी के वियोग में व्याकुल श्री राम जी के दर्शन किए।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे हैं। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां

सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए। आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगें उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

पूछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी। पूछे अवध के नर और नारी, रास्ता देखे महल अटारी। पूछे सिंहासन के खड़ाऊं, पूछे कौशल

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।